0: चल वीरे घर चल।
1: तो कहानी सुनते हैं अनपढ़ माँ की कहानी जड़ी है ये भी कुछ ना कुछ छुपया कुछ गल्लां छुपियां कुछ रिश्ते छुपियो कुछ हदायतां छुपियां। चलो सुनते हैं कहानी किवें लग्या कहानी किस तरह लगी जां प्रोग्राम किस तरह लगा जरूर दस्या करो। फोन नंबर 9676399999 अनपढ़ मां की कहानी अगे सुन दें।
2: वकास एक कामयाब आदमी बन चुका था, गाड़ी बंगला बेहतरीन नौकरी जो आजकल एक कामयाब शख्स कहलाने के लिए बेहद जरूरी शुमार किया जाता है। उसने अपने आबाई इलाके को छोड़कर महंगी सोसाइटी में घर ले लिया, शादी भी की, ऊंचे खानदान की लड़की घर ले आया। कुछ अरसा गुजरा तो उसकी बीवी उसे कहने लगी, देखो मैं तुम्हारी माँ के साथ रह नहीं सकती क्योंकि वो एक अनपढ़ औरत है, मुझे किसी को बताते हुए भी शर्म आती है, ये मेरी सास है, लिहाजा मुझे एक अलहदा घर चाहिए या अपनी माँ को कहीं दूर छोड़ाओ। और फिलहाल मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। वो काफी हैरान होकर बोला, मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन उसकी रोज रोज की जिद और लड़ाई से तंग आकर आखिर एक दिन उसने हथियार डाल ही दिए और अपनी माँ से इस बारे में बात करने पर आमादा हो गया। आज रात जब वो घर आया तो अपने कमरे में जाने की बजाय सीधा माँ के कमरे में चला गया। माँ अपने लखते जिगर को आज अपने कमरे में देखकर खुश हुई और बैठने का बोला। हाल अहवाल पूछने के बाद माँ ने आज इस तरह बजाय अपने कमरे में जाने के सीधा उसके कमरे में आने की वजह पूछी तो कहने लगा, माँ मैं अब इस काबिल हो गया हूँ कि आपके तमाम एहसानात का बदला चार गुना करके आपको वापिस कर दूँ। ये हिसाब चुकता करके मैं अपनी बीवी को लेकर कहीं और घर ले लूँगा। मैं और मेरी बीवी वहीं रहेंगे और आप आराम से यहीं रहिएगा। माँ ने जवाब दिया, बेटा हिसाब जरा लंबा है, इसके लिए थोड़ा वक्त दरकार है। वो बोला, कोई बात नहीं अम्मा, जल्दी भी क्या है, आप आराम से हिसाब कर लीजिए। इतना बोलकर वो अपने कमरे में वापस चला गया। रात जब गहरी होने लगी तो माँ ने एक जग में पानी भरा और बेटे के कमरे में जाकर उसके बिस्तर की एक तरफ डाल दिया। बेटे ने जब इस तरफ करवट ली पानी की वजह से उसकी आंख खुल गई। जब देखा कि माँ हाथ में जग लिए खड़ी है और बिस्तर पर भी पानी है और बिस्तर पर पानी भी उसने ही डाला है तो कहने लगा, अम्मा ये आप क्या कर रही हैं। माँ बोली, बेटा अपने बचपन में पता नहीं कितनी दफा तूने मेरा बिस्तर इसी तरह गीला किया और मैं गुस्सा करने की बजाय तुम्हें खुश जगह पर डाल देती और खुद गीली जगह लेट जाती, बल्कि बाज़ुकात अपने पेट पर भी सुला लिया करती। सोचा तुम्हें बता दूं, हिसाब चुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अब तुम इसी घर में रहो, मुझे कहीं भी एक कमरे का घर ले दो या तुम्हारे घर के पिछली तरफ का कमरा ही मुझे दे दो, मैं वहीं रह लूंगी। वो उठकर बैठ चुका था और उदास आंखों से माँ की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि माँ को क्या जवाब दे। माँ कुछ देर रुककर अपने कमरे में जा चुकी थी। ये काफी देर तक जागता रहा और फिर अचानक उसने एक फैसला किया और सुकून की नींद सो गया। सुबह हुई, बीवी को घर बुलाया, उसकी पसंद की कुछ चीजें मुहैया की और कहा, ये बताओ तुम्हारी अम्मी कहाँ रहती हैं? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको मालूम तो है मेरे भाई के घर में रहती है। बीवी ने जवाब दिया, अच्छा तो चलो एक काम करते हैं, हम अच्छा सा एक घर खरीदते हैं जिसमें तुम्हारी और मेरी अम्मी रहेंगी। बीवी बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी अम्मी अपने बेटे बगैर कैसे रहेगी, वहां उनका कौन ख्याल रखेगा। बीवी ने बुझे बुझे लहजे में जवाब दिया। शोहर ने कहा, जिस तरह आपको अपनी अम्मी का ख्याल है और होना भी चाहिए, बल्कि जो अपनी वालदा का खैर खा ना हो वो अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता, तो आप मुझे बताओ कि मैं अच्छा इंसान बनूं या ना बनूं। इस आदमी की हिकमत भरी गुफ्तगू से बीवी को समझ आ चुकी थी और फिर जब रात आई तो घर का मंजर भी अजीब समा पेश कर रहा था। रात दस्तरखान पर एक माँ, उसका बेटा, बहू, पोते पोतियां मिलकर खाना खा रहे थे। खुशियां बिखर रही थी। रात मियां बीवी की आंखों में आंसू और जुबां पर एक ही जुमला था कि यकीनन जो सुकून आज मिला है वो सुकून सारी जिंदगी ना मिल सका। तो प्यारे दोस्तों, माँ बाप की जात ऐसी जात है जो सारी जिंदगी हमें पालते पोसते बड़ा करते हैं, जवान करते हैं, हमारी तालीम, सेहत, हमारी हर ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। और आखिर में बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि आठ बच्चों को एक माँ ने पाला होता है और फिर क्या होता है कि आठ बच्चों से एक माँ नहीं पलती। तो प्यारे दोस्तों, इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए कि आप भी साहिब औलाद हैं। आज आप अपनी माँ, अपने बाप के साथ जैसा करेंगे, कल आपकी औलाद आपके साथ वैसा ही सलूक करेगी जैसा आपने अपनी माँ बाप के साथ सलूक किया। अगर आपने अपनी माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया तो कल आपके साथ भी अच्छा सलूक होगा, क्योंकि ये दुनिया मकाफात अमल है।
1: ये सी अनपढ़ माँ की कहानी। फिर निचोड़ यही निकलता कि जिन्ना असी अपनी माँ को प्यार करते हैं, दूसरा माँ दूसरे की माँ को भी उन्ना ही प्यार करिए। जे रिश्ते च दो इंसान परिवार बनाते हैं, पति पत्नी बन के, तो दोनों मावां उन्ना ही प्यार रिस्पैक्ट दे के चलिए तो रिश्ते वधिया चलणगे, और होना भी चाहिए।
3: सेवा करोगे तां, अदरवाइज नहीं।

0: अक्सर मामां बच्चों के नाम रखदी।
1: बचपन भी अज मैं नहीं भुलिया, ना भुलिया तेरिया चावां।
0: मैं जिदा पहला कहा सी कि मैं गल्लां बड़ियां सच्चियां ते कोरियां जे करनियां, पुत चाहे मेरे वर्गा काला जा क्यों ना होवे पर मां लई हीरा हुंदा। सही है ना गल, काले रंग ते भी टीका ला के तोड़ दिया, काले रंग का किते नजर ना लगदे, आ हुंदा मां दा प्यार। पर असी की मुल पाउने मां।
1: बचपन